0: आदमी हर गणिंग है गणित बीस मिनट में दिवे राज्य का डॉल में गणित में दिन बाजर है दुने हते खबर में तो कनाल में फिर अनका इस प्रोग्राम में आल में कोरिया दान में तो के प्रोग्राम तो बेहद में गणित ने ऑन रमीज
1: देंगे अलगों डिज में में तो के प्रोग्राम का अलगों में वाह के दखों में दनी तेल सीमिया को दिन मुझता मोगे फरातुम बेनु मनी कों का हले ही तेरे कमेत तो एंग वड़ान वान अलगों में फाशमिस फाह कोलिंग अशे में मी फाह कुरने बाइन लगवा मी को तुम फाह कुरा तेल सीमिया दोह के गुतुगा हते खबर के कुरी मिस अलगों में बाय बेफ प्रणा वाह के दखा लिम वाह के दखा लीरो हम मी मुझता मोगे फरातुम बेनु वा ही तेरे कम के तेरे एम बोड़ा ले बेनुम बा कमगे वाहक फाह कुरेगे दे देते दिन ओगा तेरे कमालालुम बसिमेने गोत
0: मे मुहिम कम के ले हदिया कुरन दे गणमना अमे बेंगे देतो नफसानी आदि इतिमाय हे तेरे कमी बरम मुहिम कम गोदा दे मे कम हेलुन तेरे कुमुर मे बरम मुहिम कम मे होरिहा कम क बिस्नाला आदि वजीफा ग मैद दनो गदी फसीह कुदिनुमा मे कहल बाय कंत तव कालमना हते के खबर कुरियाल मे वाह दखा दे तिम बेफला का के वाह दखा दे ने बेफला के बेले ने वेरे अन देबे फना के आलमे हेन तेरे बरम मुहिम वाह तक हिस्सा कुरब वाह बे ಕುರನೆ ಅಳಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಬೆ ಹಣ ವಾಹ ದಕ್ಕಾದ ವಾರ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತನ ಗಾಲ ಮಿಕಮ ಬಿಹೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ರು ಮಾದು ಮಾತ ಅಳಮನ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಅಣಕಮ ಅದಿ ಎಬೆ ಹಣಗೆ ತಜರ್ಬಾ ತಬ ಸಾಲ್ಮನ ಹಿಸ್ಸ ಕುರ ಬಾಣಕಮ
1: ದತ್ತೆ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎ ನನ್ನ ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲವ ಫೋನ್ ಗುಳು ವಾಣ ಮತಿ ನೆತ್ರಿಂ ಹತರೆ ಸುಮಿಂಗ್ ಹೈ ಸುಮಿಂಗ್ ಹೈ ನಂಬರ್ ಗುಳು ವಾಣ ಮರ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಬಾವನ್ ಫಸ್ವರ ಕ ಮಿನಿಟ ಮೇವಿ ಇಂಗೆ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಫಾನ್ಸಾ ಸಿಗುಮಾ ಮೇ ಲವೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರೆವೆ ಎಮ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎ ಮೆದರ್ ಕೊ ಲವೆ ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರೆವೆ ಮಿವಗತ್ ಕೊಳ್ಗೆ ತೆರೆಗ
2: IKEA presents
3: Bajwer Henry
4: IKEA Opticals in eng has rupiyai mate giviya fariya kurav bagen nasibiri farataka debe fuloka drum loan umra dature mi promotion ga hedu kurak komme eng has rupiyai ka coupon ne mi ge iturun tafato ekki brand takun 30% hame discount adi komme thing has rupiyai matin kurav bagiya fariya ka fasa te rupiyai gift voucher adivas adivas nasiba gwasan kollu mang ailaya ratte hinnaiku avahan IKEA Opticals ziyara kurava

0: categoria.
1: Vara riti, vara hunar veri kudzake lavai ko me fashioni program. Ani ka varang ibratri vahak take me lavaga me kiya deni vesto.
2: Foi kiya ge mol kudzake ka vahak me dekki. Foi kima den fahiwa kantatau ge vahak me dekki mi lavaga. Puriha kudin ves foi kiya pastah kudin na vaane ka ma datam mi ummid kurani.
1: ফয়কিয়ে মা তিকুদিনগে মাওলুমাতগে খাজানাবেস ওয়ারাম মুসসাদিওয়ানে এরা বাস বেনু কুরামবি রাঙ্গালু গয়েবেস তিকুদিনে ইঙ্গিগেন দানে কবা কুদিন প্রোগ্রাম গ হেমেনে মাসেকেতা হিঙ্গা কুদিনে কিয়ালামা হুরহা কুদেস ওয়ারা রাঙ্গালা আডো হালত সেঙ্গে
2: মিয়াদুস মিয়তি হিঙ্গা এমমিমা এমএ ফরতা মা স্পেলিং বি গাওয়াগে পালাল স্পেলিং বি মিমাসেকত গামি ওয়াগতে কি মি দত্তমেন দেন লাফসে এ লাফসু বুনিমা ইংরেজি লাফসেং ইংগে কুদিনে এ লাফসু বুনিমা এগ আকুর তাকিয়াল দে মিজেহেরি মিসাল কা ফিশ বুনিমা ফিশ কে আকুর তাকিয়াল দে মিজেহেনি ফিশ গেন নিমেন্দে এফ আই এস এইচ এগোতা দেন মিয়াতি ওয়াকি কলমা মিমাসেকাতুগা ওয়াগতকি মিমাসেকাতুগা কমমেস দেকামেগা নুনি দেতানেগ গহুন্না এচ্চেহিগে লিস্ট দত্তমেন কিয়াদেন কিয়াদিনিমা কুদিন জেহেনি এতানুং দত্তমেন বুনা কামেন নুনি তানেগ গহুন্না এচ্চেহিগে লিস্ট দত্তমেন কিয়াদেন গে লিস্ট তেরে ওয়াকি কল দেমি জেহেনি একামেগা বেনুং কুরা এচ্চে দেম মিয়াতি দেতিন জুমলা মি কুদিন দিবেহি কিয়ং ইগেবার বালালা দত্তমেন কুরিয়া মি কেন্দা মাসেকতে স্থিরি সিকুন্ত তেরেগা মি তিন জুমলা দত্তমেনা কিয়াল দেন চেহেনি গে কুদিন দেন এমমে তিন সুয়াল মি মাসেকত গহা দেন জেহে গদে কি দত্তমেন আমু মালুমাত কে তিন সুয়াল কুদিন না কল্লানা কল্লিমা থিরি সুকুন তেরেগা দত্তমেনা এগা জবাব দেন চেহেনি গে মিসাল কা দিবেহি দিদাগা হুন কুলতক কি কোবাহে বুনিম দিবে দিদাগা হুন ফেহি রাইং হুদু এগতক কিয়াদেন জেহেনি তেমিয়তি এমমে ফাহুমসেকে ফাসমান মসেকে মি জুমলা ফুরি হাম কুরাম মিমসেকাতুগ দত্তমেন জুমলা দেনং হুস্তং কোলে ও জুমলা এ হুস্তং কোলগ ও লাফসু কুদিন দত্তমেন বুনে দেন জেহেনি গে ওয়ার ফাসে হদ হুরি হাম সেকে
1: মি হুরি হাম মাসেকে তোকতে রেস তিকুদিন কোলম মিজাইনি হাম এমমে মাসেকতে এই গুরুয়াতুন একুজাক দিমাওয়া নাম্বারে গওনা মাসেকতে তিকুদিন কোলন জেহেনি এহনো
2: এমমে মহিগা কুজাক আওয়াহক দক্কাল
1: আসসালামু আলাইকুম
3: ওয়ালাইকুম
1: আসসালাম
3: মানা লাপা
1: কবা কেনেন হালো
3: দাদালো
1: কি কোলনি মানা
3: ইনি রকেটু কোলালা
1: রকেটু কোলালানি
3: কক্কয়ে কোলালা
1: কক্কয়ে কোলালানি দ মানা কি আই সব কুগুলি ফমি হরি মানা
3: পাপ দিফুশি
1: দিফুশি দেখোলে বড় বিসার দ বিসার মানালে ইঙ্গে তো উফাবের হাবির বিশন করিয়া দাগয়
3: লাপা
1: মানা
3: লাপা
1: মানাগে আড়ু তাঙ্কলে নু সাফ কো দতমেন লিবেনি দতমে কুডে ইরকলে গিতরে এব গুড়া লঙ্গে এহেমা হুরিহা কুদেবেস প্রোগ্রাম গা বাভেরি মামুন গেন্দামবি তিকুদিন গুলাানি তিনে তিনে হাতারে সুমেং হাই মে নাম্বার দেন আদিবসে ফার তিকুদিনা মাসেকেতা হানদান কল্লা দেনা ওয়াকি কল্লামা দেতিন জুমলা এমমে তিন সুয়ালু স্পেলিং বি জুমলা ফুরিহা মকুরামা এই মি প্রোগ্রাম গা হিমেনে মাসেকেতা এহনে মিস তিকুদিন কোলন জেনি হামা এমমে মাসেকতে এই গুরুয়াতু তিকুদি নাগা নাম্বারে গো না মাসেকতে
2: একাকুম বারে কমমে বেস এন নাম্বারে কুদি নাগানি নেকিম এ নাম্বার গ অন্ন মাসেকে দতম মে হাওয়াল কোলানি মি ফাস মাসেকতুং গুরে কমমেস এম মাসেকতে ಕೊಮ್ಮೆ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಕವೆಸ್ ಒಣ್ಣಾನೆ
1: ಮೆಹರ್ ದತ್ತಮೆ ಅಣೆಕ್ಕವೆಸ್ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಾನ ಮಣಾಲ ಗುಳಾಲವೇತು ಮೆಹರ್ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಇತುರು ಬ್ಯಾವರಿಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲವೇತು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
3: ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ
1: ಹಾಯ್ಸ್ ಕೊಬ ಕೇಣೆ ಹಾಲು ಕೇ ಕೊಲ್ಲಣಿ ಕಮೆ ನುಕುರ ಹಾಯ್ಸ ಕೇ ಹೈಸಾಪ್ಕುಂ ಗುಳಿಫಮಿ ಹುರಿ ಮಾಲೆ ಹಾಯ್ಸ ಎಂಗೇತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಗೋಯ್ ಅದಿ ಆಲಂ ಮಿ ಬ್ಯಾವರಿವಿ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಕುಡಕೊ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತಂ ಹುಣ್ಣಗೊಯ್ ಕಿಯಾದೆ ವಾಣೆದೋ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಸೆಕ್ಕತೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಬಿ ವಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಮ ದೆ ತಿನ್ ಜುಮ್ಲ ಎಂ ಮೆ ತಿನ್ ಸುವಾಲು ಜುಮ್ಲ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರಮ ಮಿ ತನು ಕೊಮೆಸ್ ಎಂ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ದತ್ತಮೆಂ ಮಿ ದೆಣಿ ಎಯ್ ಏಕಕುಂ ಬಾರಯ ನಂಬರ್ ನಗಾಫಾ ನಂಬರುಗ ಒಣ್ಣ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲ ನೀಗೆ ಹಿಂಗ ಹೆಮ ಲಸ್ನುಕೊ ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ನಗ ಏಕಕುಂ ಬಾರೆ ಕೊನ್ ನಂಬರ್ ನಗಾಣಿ ಹಾಯ್ಸ್ ಏಕಕುಂ ಬಾರೆ ಹಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಕೇ ಕೇತ ಹಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಕೀ ಕೇ ಹಾಯ್ ತೋ ಎಮೆ ಮಹಿಂಗ ಹಾಯ್ಗೊ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಲಾಲಮಾದೋ ಹಾಯ್ಗ ಮಿಯೋತಿ ದೆತಿನ್ ಜುಮ್ಲ ಹಾಯ್ಸ್ ದೆತಿನ್ ಜುಮ್ಲ ಹಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೇತ ಮಿ ಮಸಕತ್ ಕ ವಾಗೊಯ್ ದತ್ತ ಕಿಯಾಲ್ ದೇಣ ಜುಮ್ಲ ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ ಜುಮ್ಲೆ ಹಾಯ್ಸೇನೆ ಜುಮ್ಲ ತ ಕಿಯಾಲದೆ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳುತ ಬಪ್ಪ ಅಬದುವಸ್ ಹೆವಣಸೆ ಹೆದ್ದೇವೆ ಎ ಜುಮ್ಲ ಕಿಯಾಲದೀವ ಹೆವಣಸೆ ಹೆದ್ದೇವೆ ಕಿಯಾಲಬ ಮೀಹುಣ್ಣ ಬದ್ದಲವಾಯಿರು ಹಿಣಿತುಂ ವೆಲಾಶೆ ಕೊಕ್ಕೊಯಕಿ ಬಸ್ ಹಾಕುಜ್ಜಕೆ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ವರ ಫುರಿ ಹಮಯ ವರ ಫರಿತ ಕಮಾಯಕು ಹಾಯ್ಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಕೊಲ್ಲಿ ದತ್ತಮೆ ಮಿ ಬಲಾಲಿ ದತ್ತಮೆ ಮಿ ಕಿಯಾಲಿ ಜುಮ್ಲಾ ಹಾಯ್ಸಂ ಎಂಗೆ ಮೆಂವರೆ ದಿವೆಹಿ ಫರಿತ ಮಿಂವರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಮೆ ಮಹಮ ವರ ವರ ಫರಿತ ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ಸ್ ಉಫಾವೆಜಿ ತಮಸೆಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲವೋಣಿಮ ಹಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಮಸೆಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲೀಮ ಹದಿಯಾವೆಸ್ ಲಿಬೇಣೆ ಉಫಾವೆರಿ ಹಾವೀರು ಮಿಶೋಗ ಹುರಿ ಹಾಕುದೇವ ಸರ ಉಫಾವಾಗುತ್ತ ಶೋ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ಸ್ ಆಮ್ಕೊ ದೆಂಗ್ ಹಾವೀರ್ ಗಡಿ ಹಾಯ್ಸ್ ಕಿ ಕೊಲ್ಲಣಿ ಬಂದು ದುವ ಹೆಣ್ಣು ಮೇದಕ್ಕೆ ಪಾಕದ್ದಣಿ ಏಕ ಮಿಯದು ನು ದಂದೋ ಮೂಸುಂಗೆ ಹಾರಂಗಳು ನುಂವಿಮ ಹಾಯ್ಸ್ ಫಿನಾದ ತಮ್ಮೆ ವರಂ ಉಫಾವೆಜ ಹಾಯ್ಸ ಬದ್ದಲ್ವೀಮ ಉಮ್ಮಿದ್ ಕುರ ಇತುರು ಶೋ ಎಗ್ಗವೆಸ್ ಹಾಯ್ಸ ಬದ್ದಲ್ ವಾಣಿಕ ಮಂಗದೆ ಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮ ಹಾಯ್ಸ ವಕಿವೆಲು ಮಫಾವ್ ವರ ರೀತಿ ಲವಾಯ್ ಕಫಾವ್ ಅಣಿಕವೆಸ್ ತಿಕುದಿನ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಣ ತಿಕುದಿನ್ ನನ್ನೊಟ್ಕುರಮು ಗೆಂದಚ್ಚ ಹಿಂಗೆ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹತರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಮಿ ನಂಬರ್ ಗುಳಾಲಾಣಿ

0: हांगार अंगार दो मेंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दियागट तिरियो आदि बुद्ध दो हकेरे मेंदम पार गड़ तिरियो हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य चाडू एवे ने नाला एरे हूँ ताहम मदे नुकुरा ए उन्दकु तसवर विस नुकुरेवे एकमको एकुलुना एलोबी एजसबाता एहुसासु मिहि फुरि पांडो वणि
2: मिहि तुगे लोय पेती
3: कोमे बुददु हे गे मेंदुर कुरि एगार गडी फनेरे रिपीट हम एरे दिह गडी तिरि हो
4: इन हा सतरस्ते के सालिस नोए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि अट्टे नोए मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
2: दिवहिराचे के अडु
4: इंतजार कुंगगा
2: मिहितुगे लोय पेती
5: तारीफुळ उफम्मु

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबा वैरु बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाहि।
3: टेक के दुनिया के आलोकन में दातुरु कुगेंग उले रु टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा है बड़े ते कॉम्फर्ट तक उनके नमून दा पतल तक बलानो ला दो कुल्लम की खुरम वाले वर्ग का में नू मी हफ्ता एंग हास टेक के एम में फाव के खबर तंग अड़ो हाल तिया एहुन तेरी थाईयार तो कुरियंग उती टेक के खबर ता
4: खबर